0: इस संडे की ढलती सुबह हमें जहाँ वक्त थोड़ा धीमा चलता है और यादें थोड़ी तेज दौड़ती है। बचपन याद है ना, जब संडे मतलब था बिना अलार्म के उठना, मम्मी के हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता और दूरदर्शन पर कोई पुराना सुपर हिट शो देखना। आज भी दिल करता है वक्त वही रोक दो यार। और इसी नॉस्टैल्जिया को ताज़ा करने के लिए आपका ये स्पेशल शो है संडे स्पेशल, जहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए पुरानी यादों की महक, कुछ दिल छू लेने वाले किस्से और वो गाने जो दिल में सीधे उतर जाते हैं। तो आइए इस आलसी सुबह को बनाते हैं और भी खास। शुरू करते हैं आज का ये सफर यादों के साथ, बातों के साथ और सबसे प्यारी कंपनी के साथ, यानी आपके साथ। आपकी प्यारी कंपनी अपने साथ तो हमेशा रहेगी, इसी के साथ 90s वाला तड़का तो रहेगा ही। सो बढ़िया से गानों के साथ बने रहिए मेरे यानी के आरजे अदनान के साथ। तो बने रहिए क्योंकि संडे है तो और सुकून जरूरी है। स्टे ट्यून।
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो के साथ है आरजे अदनान। एमजीएम पे सुनो धमाल करे ये संडे स्पेशल
2: ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आरजे अदनान आपके साथ है आपकी संडे वाली मॉर्निंग गुड करने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान। और संडे वाली मॉर्निंग अपनी स्पेशल क्यों होती पता है? क्योंकि आज होता है अपना 90s वाला सफर।
1: वो बातें 90s की बातें,
0: एक ऐसा सफर जो हमें ले चलता है उन दिनों में जब जिंदगी फास्ट नहीं मस्त हुआ करती थी, जब मोबाइल नहीं थे लेकिन दोस्ती दिल से होती थी, जब सेल्फी नहीं थी लेकिन यादें सबसे खूबसूरत होती थी, जब संडे का मतलब सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि पूरा परिवार साथ होता था। हम बात करेंगे उन यादों की जो शायद आज भी कहीं दिल से किसी कोने में संभाल कर रखी है हमने। तो तैयार हो जाएगा नॉस्टैल्जिया की इस राइड के लिए। यह है 90s वाला शो विद आरजे अदनान, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। लौट के आता हूँ कुछ ही देर में, तब तक के लिए 90s के बेहतरीन गाने एंजॉय कीजिएगा।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती है, वो बातें
0: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे अदनान, और आज संडे मॉर्निंग है और आज का ये सफर है 90s वाला सफर।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: तो वक्त आ गया है मेमोरीज का रिवाइंड बटन दबाने का। याद है वो दिन जब कार्टून देखने के लिए टाइम फिक्स नहीं होता था, जब समर वेकेशन का मतलब नाना नानी का घर होता था और बारिश का मतलब बस भीगना होता था और गली में वो छोटी कागज की नाव बनाकर उसे बहा देना होता था और तो के साथ बारिश में चीकड़ में खेलना तो लाजमी था, और जब एक छोटी सी चॉकलेट से भी पूरा दिन बन जाता था। आज भले आप 100-200 की चॉकलेट खा लो, वो मजा नहीं आता। जब एक बचपन में वो किसमी वाली चॉकलेट आती थी, उसका एक टेस्ट ही अलग होता था। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जो आज बहुत बड़ी यादें बन चुकी है, और आप भी मेरे साथ ऐसे कुछ मोमेंट्स शेयर कर सकते हो जो कि आपकी 90s की सबसे प्यारी यादें थी। कहां करोगे? कॉल कर सकते हो आप 9359320080 इस नंबर पर, मैसेज करके बता सकते हो इसी नंबर पर, नंबर है 9359320080। चलिए फिर अभी थोड़ा आवाज बढ़ाइए, दिल खोल दीजिए, क्योंकि शुरू हो चुका है अपना 90s वाला शो, और अभी प्ले होने वाले आपके यादों की प्लेलिस्ट वाले वो 90s के सुपर डुपर हिट गाने, और वो भी एंजॉय करना है आपको। और अभी लौट कर आऊंगा कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन द शो 90s वाला शो।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
0: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: याद है दोस्तों मोहल्ले की वो साइकिल की दुकान जहाँ सिर्फ 1 रुपए या 2 रुपए में आधा घंटा या फिर 1 घंटा भी हमें साइकिल किराए से मिलती थी। याद आए कुछ? आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ 90s वाला शो।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: और जैसे ही साइकिल मिलती थी ना तो लगता था कि पूरी दुनिया हमने जीत ली है। देखो सीट बड़ी हो या छोटी हो, देखो साइकिल अगर हमने बड़ी खरीदी ना तो हम कैची बोल के साइकिल चलाते थे क्रॉस तरीके से, क्योंकि सीट पर बैठने के बाद पैंडल तक तो पैर बिल्कुल भी नहीं पहुंचते थे, तो कैची तरीके से हम साइकिल चलाते थे और उसके बाद गिरना तो जरूरी था ही। और जब साइकिल अपने हाथ में आती थी तो 1 घंटा मानो हम राजा वाली फीलिंग में होते थे। बस इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, इस दोस्त के साथ घूमना फिरना, बस एंजॉय करना होता था। लगता था कि हमने तो पूरी दुनिया ही जीत ली है। और अगर टाइम खत्म हो रहा हो और हम दुकान से बहुत दूर हो तो इतने स्पीड में हम साइकिल चलाते थे कि वक्त पर इस साइकिल वाले को उसकी साइकिल दे दे, उसका मजा ही कुछ अलग था ना। आज हजारों की साइकिल खरीद लेते हैं, बाइक्स है, गाड़ियां है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर, लेकिन वो 2 रुपए वाले 1 घंटे में जो साइकिल मिलती थी ना यार, उसका मजा ही कुछ अलग था। ये सुनने के बाद आपको भी याद आया होगा ना आपका बचपन, तो ये फीलिंग आपने भी महसूस की होगी, हाँ या ना, जरा बताइए मुझे डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस पेज पर। लौट कर आऊंगा और भी बहुत सी यादें ताजा करने कुछ ही देर में। स्टे ट्यून।

0: 90s के बचपन का स्कूल बैग याद है आपको? मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और आप सुन रहे हो 90s वाला शो।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: स्कूल बैग बैग नहीं अलमारी ज्यादा लगती थी। इतनी सारी बुक्स, कॉपीज, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन, वाटर बॉटल और बैग उठाते लगता था। आज जिम तो हो ही गई अपनी, लेकिन उसी बैग में ना तो दोस्तों के लेटर्स भी होते थे, चॉकलेट के रैपर होते थे और एग्जाम का लकी पेन भी होता था। वो बैग सिर्फ किताबों की नहीं थी, यादों का भी बोझ उठाती थी। आजकल हम देखते हैं कि स्कूल बैग इतने स्टाइलिश है, लाइट वेट है, लेकिन 90s का बचपन बहुत अलग था और उस वक्त के बैग्स भी अलग थे। एक अलग ही पर्सनैलिटी होती थी उस बैग की, ना तो जिप थोड़ी टूटी होती थी, चेन अटक जाती थी, शोल्डर देखो अब भी आपको याद होगा ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप में बैग होती थी, याद है बड़ी वाली बैग जिसके दोनों साइड पर पॉकेट होते थे, फिर ऊपर एक साइड होती उसके नीचे एक साइड होती थी, याद आया कुछ? ऐसी बड़ी सी होती थी, ब्लैक ग्रे कलर में, खाकी कलर में, और हर एक बच्चे ने वो बैग यूज की है। हम जितने साइज की थे ना बचपन में, तो हमारे साइज से बड़ी बैग तो वो लगती थी हमारे पीठ के ऊपर। एग्जैक्टली वही बैग जिसकी इमेज अभी आपके दिमाग में तैयार हुई है, वैसी बैग आपने यूज की है ना? हर किसी ने की है, यही तो है यादों की अलमारी अपने। और भी बातें होगी अपनी कुछ देर में, तब तक स्टे ट्यून्ड।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती है, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: 90s के वक्त हेयर स्टाइल याद है आपको, वो एक अलग ही इवेंट था। आप सुन रहे हो 90s वाला शो ऑन MGM 90.8 FM।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: और स्कूल जाने से पहले मम्मी तेल लगाती थी और बाल इतने चिपक जाते थे कि हवा भी उन्हें हिला नहीं पाती। और अगर किसी शादी में जाना हो तो एक साइड में पूरे बाल लेकर लगता था कि यार हम तो किसी हीरो से कम नहीं है। आज हेयर वैक्स है, हेयर स्प्रे है, लेकिन उस तेल की चमक का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। कि किसी को सलमान खान बनना था, किसी को शाहरुख खान और किसी को संजय दत्त जैसी हेयर स्टाइल चाहिए थी। कंघी हमेशा अपने पॉकेट में होती थी और हर 10 मिनट के बाद हम अपने बाल सेट करते थे। और लड़कियों की तो लंबी चोटियां, रेड रिबन या व्हाइट रिबन, ये तो कंपलसरी था ही। और दोपहर के वक्त लड़कियां अगर कुछ काम में ना होना तो एक दूसरे के सर पर तेल लगाती हुई या उनके बाल सेट करते हुए वो बैठती थी, गप्पे लड़ाती थी। वही सिंपलिसिटी आज भी यादों में परफेक्ट है अपने और कहीं ना कहीं खो चुकी है आज के वक्त में। तो उन्हीं यादों के पिटारे को हम ताजा करेंगे कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: रेडी प्रोग्राम ची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेटा साइंस,
0: पीजी, एमटेक इन एआई एंड एमएल, एमटेक डेटा साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी एंड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404 94299.

0: 90s वाले शो में आरजे अदनान को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: इसे याद है वो प्लास्टिक की वाटर बॉटल जो बैग के साइड में लटकी रहती थी और टिफिन खोलते ही पूरी क्लास की नजर उस पर होती थी। क्या लाया है आज तुमने? अपना टिफिन कम और दोस्तों का टिफिन ज्यादा खाते थे। उस वक्त शेयरिंग कोई लेसन नहीं था, वो हमारी आदत थी। और 90s वाले बच्चों ने तो ये सब चीजें की होगी अपने स्कूल में। स्कूल के पहले लेक्चर में ही पूरा टिफिन खत्म हो जाता था और फिर इंटरवल तक खाना कम बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि इंटरवल में मिड डे मील तो मिलता ही था ना। खिचड़ी होती थी, दाल चावल होते थे, लंच ब्रेक की बेल बजती थी और क्लासरूम एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन ही जाता था। किसी के घर से आलू के पराठे, किसी की इडली तो किसी का जैम ब्रेड। और एक और डायलॉग पक्का था, एक बाइट देना बस, कि 90s का टिफिन सबका कॉमन कनेक्शन होता है और होता था भाई। आपको भी ये सब चीजें सुनकर अपने स्कूल की यादें तो ताजा हुई होगी ना। हर किसी ने ये सब चीजें की है यार, वही तो एक खास बात थी, सादगी थी उस दौर की। स्टे ट्यून्ड।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं। वो बातें
0: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: वेलकम बैक ऑन MGM 90.8 FM 90s वाला शो आज आप एंजॉय कर रहे हैं।
1: वो बातें 90s की बातें
0: और 90s वाले शो में आज हमने तो 90s की बहुत सारी बातें, उसके यादगार पल एंजॉय किए, आपकी कुछ मेमोरीज रियलाइजेशन हुआ होगा, आपको कुछ यादें ताजी हुई होगी और आप भी कुछ वक्त के लिए 90s के दौर में चले गए होंगे। तो आज यहीं पर हम रुकते हैं, आपसे मैं लेता हूं अलविदा। बाय द वे, आपकी भी कुछ 90s वाली बेहतरीन सी यादें होगी ना तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपकी यादें मेमोरीज क्या थी मैसेज के जरिए, रिकॉर्डिंग के जरिए, कॉल के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हो। इंस्टाग्राम पर DM कीजिएगा RJ अदनानी से इंस्टा पेज पर। अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक ख्याल रखिएगा। और हाँ, और हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करें 90s के, ये भी आप मुझ तक जरूर पहुंचाइए। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
0: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
0: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar।
2: Pharmacy madhe gunvatta ani sanshodhan purna shikshanasathi
5: MGM vidyapeethacha department of pharmaceutical science madhe pravesh ghya,
2: jithe diploma in pharmacy and bachelor of pharmacy madhe admission suru। Also direct admission in B Pharmacy second year, avail attractive scholarships,
5: atyadhunik ashi laboratory, uchcha shikshit ani anubhavi staff, bhavya divya asa MGM campus, gunvatta ani darjedar shikshanasathi aajch pravesh nishchit kara।
4: For admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: तक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: लगा?
1: तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई
0: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम 90.8।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम 90.8।